0: ये नमन बरने ने अजरबैजान या वन बर
1: असना आयु गोरो मोरिसातोल ने नंगन गिरेक लेखार
0: गन दिया
1: इन्यो इंशाल्लाह
0: लाया मको फुमबेक ची रजातोल
1: वाओ
0: लाया मको फुमनेक ची रजातोल
1: दारु